इसका इफ एम कवा ओला वतिनी कवा 15 मिनट है ता कुछ देगे कौन खन कुछ पागे वाला अच्छा ता मासे देगे कन उसे से वाला गजी चंग का कुछ लग थम को एम तो कोई आऊंगा प्रोग्राम ता आशा कुछ से का के रात हुए कवे तू कखई से पंगा कोई खई को रात के नुमरू उन्हें तेन सेवा पेन नेखा एफ एम के मासी तेगे कवा तीने कवा 16 मिनट है मितने चू आउंगा वो लंगा जीचा हम कोई सारे के कने वो जीसे आप उसी तेगे क्राइम के सेफ्टी का वचिंग माउ तो लगे हलिंग में मितने ने असिंग कने दावा के चुकुना मासी तेगे दुबे कनु से ये कुन उन तमु से हो दुबे कनु से कवा अच्छा हो आ वो कुन्यू पंगा बन है तेगे आ सिले आ विजल आ कौन नया ओ आ सिंग जुम आ सिंग आ वा सिंग जुम आ युंगे तो वचिंग नो तुले कनुसी सिंग कुसी दे दे ये कोई कुंग थमो सी उदा कनुसी चुकुना का कवे अचो है और कुन्या नहीं दे कने दबा के चुकुना पंगा बम चिम या कल तू आ पंगा बा या तुंगा कोई सिंग या तुंग कनुसी से आ तू तू कोई तल तला तू तू कोई युंगा वो अच्छी गेम तन चोंग वाला नो वो सब जी से काल के राधु कोई अलग वाला प्रोग्राम हम तू तू कोई वो लंग जी चांग वो शा जीवन काल के अप्रोग्राम नो कौन ना कि कभी तू आ कई से पंगा वा कोई कई को राधु के नुम्रो या वो नितन सेवा पेन नेखा एफ एम मालूम तो कोई आउंगा वो लंग जी चांग कोई सारे मासी दे कनु से दुबे के सेफ्टी मन को का जी चिकांग कनु दबा चोगा कोई पंगा वा आ तुम ची वाला पंगा वा या दुबे ची चुकुना कवा असिंग ए कनु या लाती ची चुकुना नहीं दे कवा वाले पंगा वा या गया चुकुना तो कोई चिंग वो तुले कनु से मुसी दे दुबे के सेफ्टी का उन तमो से कवा ची कनु जी से आ तुतु असिंग दबा तुतु आ तल तला के चुकुना वो ची के मिटन चोगा वा वो लंग जी चांग हम कोई सागो जी से कवा तुआ कई से अगुए कई को राधु के नुमरो या उन्हें तन सेवा पेन नेखा एफ एम अनुम तो कोई अंगो वाला गुसा कविसिगा कौन का के राधु के मंगो मसो तन तंगो वोलांग